0: देवो तो छिमिंग गोरे दिना तो लो जे जे जंग रंग तो जाला रे सेम जे जंग रंग ले दे जो तो सो तिन आंजु जाला दे गोय छु पेन थक सि जियो रे
1: 牦牛以它沉默的一生为我们诠释了一个最朴素也最深刻的哲学道理，奉献与共生。当我们带着这样的理解再次将目光转回到牦牛博物馆，一切展品便拥有了全新的温度与深意。这里陈列的每一件器物都承载着牦牛沉默而慷慨的奉献，更绵延着人们对它的感念与敬畏。
2: 我们的话现在有近8000多件的藏品与牦牛相关的，皮质的、毛质的、铜质的、铁质的和石质的等等。我们皮质类的话大多数是我们传统的生产生活当中可以看到的，除此之外呢还有一个比较神秘的是，就是用牦牛皮制作出来的天珠，皮质天珠，所有皮质的藏品当中算是比较特殊和比较神秘的。当时第一个听说皮质天珠的时候也觉得不可思议，从它的工艺还有它的独特性的一些价值来讲的话，既有艺术价值和收藏价值。那这一件藏品是有一位收藏家